सिटी देसी में आज का शो जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है मेरे बहुत ही स्पेशल सॉन्ग्स जो मैं सुनता हूँ, चाहे वो मेरा डाउन टाइम हो, चाहे वो मेरा अप टाइम हो, चाहे वो मेरा खुशी का टाइम हो, चाहे मेरा दुख का टाइम हो, चाहे मैं इमोशनली स्टेबलाइज ना हो, क्योंकि उन गानों में बहुत सारे छुपे हुए मैसेज मुझे मिलते हैं और जो मुझे बूस्ट करते हैं लाइफ में कीप गोइंग ऑन के लिए। तो आज का ये एपिसोड आप सुनेंगे और देखता हूँ कि आप कितने इन मैसेजेस को आप डिसाइफर कर सकते हैं, क्या ऐसे भी कुछ मैसेजेस हैं जो आपकी लाइफ से भी रिलेट करते हैं इन मैसेजेस को लेके। वो मैसेज हो सकते हैं प्यार के, वो हो सकते हैं किसी को जो आप चाहते हो, किसी ऐसी सिचुएशन में जब आप फंस गए हो और आपको लगा हो कि इससे कैसे बाहर निकला जाए, या बहुत सारे ऐसे अनफॉर्चुनेट इंस्टेंसेस होते हैं आपकी लाइफ में, कुछ लोगों से आप मिलते हैं जिनसे आप नहीं इत्तेफाक रख पाते और आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ यादें आपको पीछे खींचती हैं। तो आज का ये एपिसोड मैंने स्पेशली क्यूरेट किया है आप सब के लिए और आप सब ये नॉनस्टॉप म्यूज़िक सुनेंगे जो कि मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट है। बहुत सारे सॉन्ग्स इसमें मैं लेके आया हूँ आपके लिए फ्राइडे नाइट के लिए, क्योंकि एसीटी देसी आपके लिए कुछ ना कुछ प्यार से हमेशा लेके आता रहता है। मैं एक और इवेंट के बारे में बात करूँगा जो है इमर्सिया, जो ANU के साथ एसीटी देसी पिछले 3 साल से करता आ रहा है, और इस साल भी एक वर्कशॉप मैं लेके आ रहा हूँ 17th of September को, जिसकी डिटेल्स मैं दूंगा आपको अपने अगले एपिसोड में। और इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैं इसके बारे में और डिटेल्स दूंगा। बहरहाल वापस आते हैं इस शो में जो आपके लिए मैं लाया हूँ नॉनस्टॉप मेरी पसंदीदा गाने आपके लिए, मेरे दिल से आपके दिल के। और मैं हूँ आपका अपना देसी आरजे विकास और ये है ACT देसी, जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनबरा और 4 इन इंडिया ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर रेडियो। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वडक्कम, केम छो एंड एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट।

आशा करता हूँ आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा और ये गाने जो मैंने बजाए आपके लिए भी कुछ यादें, कुछ सीख, कुछ फेवरेट मोमेंट्स, कुछ ऐसे मोमेंट जो आप शायद ना याद रखना चाहते हो उनको लेके आए हो, लेकिन आप उन मोमेंट से कैसे बाहर निकले हों इन सब को आपको याद दिलाया होगा इन गानों ने। तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।